0: Rati kyunzen da chotse Harriet Gedesla tselnya ili tenami kala desa da simo shezi tyunzen desa da ti khondi ta gi ti khisu ke kunda ti ne ta ndi da si khondi ga senyu i a ta si khondi khena ndi go la tsen ha kon de ya Harriet ta kon de
1: ka kon ne zo
0: wa ke tselen la kala na cho desen da na de ga de la ta ndi ne zun sen da ta si yo shezi tyunzen da ti ka ge ti e kula kunda ti ne ta si khondi tsen ga ta ndi se ke ya hi le
1: Kasu kenako tini te khai gale ti sala asi da koji ketsen di lao te da tsaga ye tine tsalo koke ke iye kutsa yoshike jile meta koji khai gale asi ushize tine meta kato te tsage ti da konti da aga tine kutsa shu march me zoni de tetili tete kuni te shu tetili aga iye meta asi aho
0: Hagade,
1: Kampar Hakondi set out a thank Kojaki Susa in Sijaki continent in Begade Zikakin Titasa. I got him in Penitego Conide a Sisi Sinti. She targeted that Conditasa. Did I get him?
0: On this and the Simetan is written that as an indel come and done that size and deal and then must see that the set to Tashula Sinta Sikul issue the Sijita and that's again.
1: A kula can not do that. She don't got yagit, say, Emanadikani, Setat, not the don't. That's how it is. It's okay, Daisy Conti, need this and met out there on the car in gooding delay. Cut in one hit it, Diani. Not the neck, I see Jani Jenny Day, Mandala, CD, the threat are condita, I got in with a Mandala. He showed you again.
0: Then again, then another they got in dead like the secret son, the next son, and then must see it in the Mandala Sea as in Econdias or Santa in the Long Dinner.
1: How come did I say, Sunny? Say, yes, Sunny, not a lot, not a lot, Sunny, and I get delayed. Can I did all this?
0: That's not a sea, Medal Nesuits and Dow the Gutson, Digos at Tenecutson, the Condin Deshu La Car, Mega Nesuits, the Condin Des Mount Go Island, like it.
1: On the zoo, the gets a teeny den is usual sent on a day. A sinner, not as a teeny day, go a new knees any desert. Can't continue to see and they continue to see. Now he yet into not a day. A cut set up cut in a day. A cane me got a cane kit did he saw a tea. Did he high go on a day? A sinner get see. A sinner is a cuny zany day. I get it. He took a test on new knees there, cut the sugar toggle and the cuny seared again on the sickest day, but the quit it, cut it, cut it in dealer. Nahe, night day, met is in the island day. He can see it. It's easy, see long did us a goodie. There's a seat, sit you can do, much as in dinner, same city. Put the same zini day, aji na te chi kutne seni zu me keten tu te seku kutne ka ne ni zeni te ji to te ya na te si ji la ne zu de ta chi tu ta ko ga ne zu de se koni ga shu ne zu kutse te ko shu ga ne zu kutse ko shu da sa ku te ne ji shu ne zu kutia si na te chi ni te aji ya अते ई खते ती कुछ ने में कैसे ती कुछ ने खाने नहीं थे ने मिटा देती कुछ ऐसी चीजों तो ना खा अच्छी कंटी कुछ आको कंटी नेजू ते ते को कंटी का नेजू कुछ शो अशु नेशु नेजू ते मैं डाला जून में लोनी दे मित उन्हें कलियत नहीं दे ना ते ची कुता ते कहनी दे अशु इंता कुछ ना चलते हैं ऐसे कंटी शु मोटे दियो दे ऐसे जो तले इच्छी शु कंटी इच्छी मिट वां कुताते कहते ना ते ची ऐसे शु कशु कुताते कहने उन्हें बेहोश कशु ना चलते हैं कंटी ता अच्छी ना ते ची अन्य दे साने मोटे दियो दे साने तात उन्होंने दे मोटे दी आ अच्छे
0: मुत्तने कंडी के इंता कंडिया सां तूत तने अमी को थी गो तंडी गल इंता कंडी ओगिं शो कंडिया कह गी थी तने अमी को क्या चाहिए थी इतनी दे बेचारा चाह इतनी दिले को तेज़ी चाउज मस्सी इतनी दे वज़ा तसी गो निचे थोंसे दिया सी कंडिया नाट से गी थी
1: अहेत ऐशिनाक अलग दे सी कने जूसें तने दे कंटिन्यू दे कोनाई दिए नाचे अति कुछ ठने अस्सी होते हैं दिए आगो दे हाथू खते जान अने अस्सी सो नहीं शो होगी दी सोनो ऐसे नहीं दिए सी ते कोनाई केंटी ऐसे ऐसे याची क्यों ना ते ते कंटिन्यू आ गया इन सांवों से आ गया इन लोग कोकी कुडी किमेचातेले नोतेजे काकनाइगेती दमजुंत नाइगेती एक्युअतिको नाहिमितेले एशिनाइतीला कुनासिनेजुंदे नमोनिया कंटितेको देचिली अगो इनिदे कंटिताग्यातिले कंटिताउ असिनिते मोजेंती असिनेनेजु कुजापिएफे

सो त्यांना तनाचा का गांडा आर्य नाकात हकात हो तना तनया स्वामी हो अगदी काय साधे अजून थिओ थिओ परत तनाई हे कार्य होणे नाही थोडे भागला अरहेचा अरहेचा आकात सगळतीने काही करे थिओ पानो व्हायचा नात अगला कोणे ईशु दे अगला आका दे नाही एका थाचं देत दे एक एका थाला कोणते बोला दे त्याने ठेवती त्याने जोडी हुआ दे एक आले गेला आहे एक अनाथ सांगत गेला आहे कथा दिवसा हे सजा कथा दिवसा आवा दे कथा दे आणि से इले इतले खराले कोयगा आथाचा बेठ्यो वरा बेठ्यो वरा खोला दे कारण ना से एक अंडे से मिलेगा वो ताई अगला दे है आ है आ दे अगला दे एक एक लगे ते मिले संजय ने हज़ाए चौसा थगाई कर वो वही तो मैं आती ना था आई वो कई हुआ था ना दे कई लोग से आई यसों ने सदा ये हो ना आई हो चुकी आकाय है ना लिया का दाव आदि लिया था रखे दे आदि लिया एकाए वादा आला एकाए वादा आला खोले एकाए रिस का से ये ला तिखाई का रास्ता है ना तिखा सामने का मुझे आई और अकुंडे याने जा जो से खा हुआ था खा हुआ था ना दे ये एक ये दिशा था नहीं था ना तो तिखा दिशा था नहीं था ना तिखा था भी दिशा क्या का दे कारे में ले दिखा दे दिखा दे अल्लाह क्या इसे था दे अगला देखो क्या रहता है से Copra ya tala de. O sea, ahí está acá gusta, ¿no? Ahora de. Ahora está Cotra de la casa y como y si se me tengo de y está así Sasone y chile Sasona de y te dice ¿no? ¿Tazo ni? De yo acá ya se está Shum tiene laxa de nuevo Laxa de nuevo en esa Noga Noga yetsara yet. Noga yetsara yet agoy. Tini tiyo tanga yaga chen yo ta hat. Hat ti. Agla di noga hai. Aga de onsho ta yash. Onsho ta yash agla di noga hai. Tene rakhi dish. Ni atlo tiyo yi raya kego de. Egi tene hi. Tene hi nama gata gomwe. Atara etsoni etsara etsokore ka etsile. Nano gara yake. Anai, anile gula di. Anile gula hi juwe ni ya. Ola ni tate hete ni ati ni wa. Oza isu ahi echi ni wazi yo ni. Agula di. Eee yade tilege. Va utlo gaya. Iye tia da ite kongu di tukne tati. Ego tale raye, que de shukune ni, yagun ni etlo, en la gola de arañeke.